ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਿਜ हे अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो गुरुद्वारा श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारे गुरु धामां दे जिन्हां तों

0: पाठ पढ़ थका तृष्णा हुए
1: वाहिगुरु जी
0: काची
1: का
0: पिंडी शब्द न चीने उदर
1: वाहिगुरु जी की फतेह दोहराए आग्या पही अकाल की
0: सिंह गुरु के शब्द एक लिव लागी तेरे।

0: आत्म जापे।
1: ख्वार हुए सब मिलेंगे,
0: पापा शानी खाक बेपूत चढ़ाई
1: बोले सो न्याल
0: कहे ते सोह पाठ पढ़े।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी
0: की मत। ओ है नाम ना जापी क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सोह। मूड बड़ा जटा सिख बादी

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय प्रतीत रखिए करते काहे विचारों तित कर गावो सोहिला सिमरिहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरपौ का सोहिला हौ वारी दिख सोहिला सदा सुख होइ रहा नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार मिलकर पा बहुतेल देहो सजन आशीषड़िया जो हो साहिब स्यों मेल घर कारे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से दे वन रागासा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तुए रहाओ विसै तसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होवा सूरज को रोते अनेक नानक करते के केते वे सराग तना श्री महला पहला गगन मै थाल रब चांद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरों करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए

सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं तर्पणं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता ऋषावल सांद्वा प्रसाद नमो दर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभुते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्भाव मुदे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता

करत समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखे सब आए। मनिए सतगुर परम विचारी, जित मिले तिसना भुख सब जाए।

कहु नानक सुन रे मना, औद घटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानो चतुर सुजान।

जो प्राणी निस दिन परै रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान।

गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत। जे प्राणी हर जस कहे ओ नानक तेह जग जीत।

जाकै सम नहीं कोए, जे सिमृत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, ए वस्तु तजी नह जाई नित नित रख उर तारो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अल्लाह पहे अठौ नंदन। प्रथम राग पहरो वै कर ही, पंच राग नी संग उचर ही। प्रथम पहर वी बिलावली पुन्याकी गावह बंगली, पुनवस लेखी की पई बारी ए पहरव की पांचव नारी। पंचम हरख दिसाख सुनावह बंगालम माध माधव गावह, ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पां। आसट पुत्र पहरव के गावह गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक आला पह संग रागनी पां चौथा पह। गोण करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, मार राग कौशक संगलाई। मारू मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड कौशक उभारा। खौ खटे औ पौरा नंद गाए, अष्ट माल कौशक संगलाए। पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल गायन तार मिला वही। ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा, संग लाई पांचौ वार जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बान्यो आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अस पुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप, का मोदी औ गुजरी संग दीपक के था। का लंका कुंतले और रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा। गौराव कनरा कल्याण, अष्ट पुत्र दीपक के जाना। साव मिल श्री राग वह गाव है, पांचव संग बरंगन लाव है। बैरारी करनाटी तरी गौरी गाव है आसावरी। ते पाछ है सिंध भी अलापी, श्री राग स्यो पांचव थापी। सालू सारग सागराया और गुण गंभीर, अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खष्टम मेघ राग वह गाव है, पांचौ संग बरंगन लाव है। सोठ गुण मलारी तुनी पुन।

मेघराज पांचो चीनी बैरा तर गई तरके दारा जबली तहर नाट्यो जल तारा।

खसट राग उन गाए, संग राग नीति सबे पुत्र रागन के, अठारह दस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत हया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सेती। मान वजियां वादाहियां, राग रत्न परवार परियां, शब्द गावने आईया। शब्दों तंगा बहु हरि के रामन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही करते रे, करता तेरे सब किश है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां ये वडियाइया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया।

सिंधवी आलापी श्री राग सौ थापी सालु सारग सागरा और गोंड गंभीर अस पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीरा खास्तम मेघराग वह गाव है पांचाओ सांग बरंग।

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जनक मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै। प्रभ का सिमरन काल पर हरै, प्रभ का सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत

प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभु का सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसै दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दुर्गह मानी प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सफल फला

जय प्रभु का सिमरन सब की सुजय प्रभु का सिमरन राही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाये प्रभ जी बसहे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभ को सिमर से जन प्रवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान प्रभु को सिमर से बेमोहताजे

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत बबे कै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई।

तपि सरथी वे अगन माहे होमत प्राण कनकाय सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करै बो आसन जैन मार्ग संजय में अत्साधन नमक निमक कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन सियर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहू न बिखिया टरै जल धोवे बो देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहु सियान पजम का पौ ब्यापै अनक जतन कर तृष्ण त्रापै भेख अनेक अग नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट स नाही ओब पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संगे हउमै शोरै जे को जन मरण ते डरै साध जना की सरणी परै

मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जहे प्रसाद सब हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिस हेत आई। तिस हेत आए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी। जे प्रसाद सा सुंदर रूप है

सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करा।

अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोटाचार बिहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन परमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नमतन नाम त्यावै,

कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग होय जियाह।

अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनों कृपा करें तिसे अपन नाम दे। बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुरजनों।

जिस होवे सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परै नाही किश कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना

आनंद रूप मंगल सज्जा कै सर्वथोक सुनिय करता कै राज मह राज योग मह जोगी तप मह तपी सरगृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तस पुरख का किनै अंत ना पाया।

मन नाम के धारे, सिमृत वेद पुराण नाम के धारे, सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे, आगास पाताल नाम के धारे, सगले आकार नाम के धारे, पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे, सुन श्रावण कर कृपा, जसु आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पावे, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरखो सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत जन जा कैर दै प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गात, जिसकी सृष्टि

ठाकुर कौ सेवक जानै संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभु पालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जस दया प्रभु तारै, नानक सो सेवक सास सास सुमारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै।

अबिनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण कहो कहा बिना समझा पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रवेका